0: थैंक यू वेरी मच।
1: प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं विन लाइफ टाइम के बारे में, क्योंकि नए नए श्रोता भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं।
0: विन लाइफ टाइम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पिछले 18 सालों से आपको ऑनलाइन डे ट्रेडिंग के बारे में बताता है। आप कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई आपको ये नहीं चाहिए कि कंप्यूटरिंग का बैकग्राउंड हो, कोई इकोनॉमिक्स का नहीं। हमारा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप आएँ देखें सुने सेमिनार में, ताकि उसमें जो रिजल्ट हैं आपको पेश किए जाएँ। आपकी अब ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट भी अपनी नहीं चाहिए, तो वेरी सिंपल सिस्टम है जी।
1: रफी जी, जिस तरह से इकोनॉमी जा रही है, कई लोग ये सोचते हैं कि हमारी जॉब तो कायम ही रखे, लेकिन पार्ट टाइम विन लाइफ से ट्रेनिंग लेकर ट्रेडिंग करे, क्या ये मुमकिन हो सकता है? प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जी एब्सोल्युटली, हम तो यही कहते हैं कि शुरू में आप ये बिजनेस को पार्ट टाइम करें। जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, जो सिंगल मदर्स हैं, जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, वो आए इसको देखें, पार्ट टाइम ज्वाइन करें। नो मोर देन 90 मिनट्स अ डे का काम है, 100-200 आसानी से बन जाता है। 23 घंटे मार्केट को लिए किसी भी वक्त आप करें, आए बैठें, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा आपकी इनफ इनकम शुरू हो जाए, 100-200 से 1000 पे चली जाए, तो फिर आप इसको फुल टाइम कर लो। अपनी जॉब को आहिस्ता आहिस्ता आप छोड़ सकते हो, लेकिन टाइम के साथ।
1: रफी जी, कई लोग ये सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग की ट्रेनिंग तो ले ले, ट्रेनिंग भी शुरू कर दे, लेकिन कई बार घूमना फिरना भी होता है। क्या बैक होम जाकर भी विन लाइफ की ट्रेनिंग के जरिए ट्रेडिंग कर सकते हैं? आपका क्या सपोर्ट रहेगा इसके बारे में जरूर गाइड करके आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस जरूर बताएं।
0: जी एब्सोल्युटली, आप दुनिया के किसी भी किनारे पे हो, मेरी तरफ से तो आप अपने लैपटॉप चांद पे भी ले जाओ तो वहां पर भी चलेगा। हर तरफ चलता है, इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, पूरी दुनिया के किसी कोने में हो और आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ते हो, लाइव स्ट्रीम से होता है, तो हम आपको अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन के सारी ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको अकेले बिल्कुल कभी नहीं फील करोगे। 23 घंटे मार्केट है, कल का सेमिनार दोनों ऑफिस में होगा, आप आके सुन सकते हैं। हमारा नंबर है 9052061008।
1: रफी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, अब आपकी बारी, जरूर कॉल करके सेमिनार अटेंड कीजिएगा। 9052061008 9052061008। डिटेल जानकारी winlifetime.com पर, winlifetime.com। रफी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू जी, टेक केयर।

0: to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
3: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बार्बरा बुलेवार्ड मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com. गुरु लक्ष्मी, साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का.
4: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम.
5: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है. इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: हाँ जी मेरे भाइयों, लीजाज कॉस्मेटिक्स सेल, प्रेस्टीज ब्रांड नेम्स कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल नेल कलर एंड नेल केयर एंड मच मोर. जरूर पहुंचिएगा 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम. लीजाज कॉस्मेटिक्स सेल, आपके लिए, सबके लिए, सब कुछ वहां पर. ये है रिड वॉइस.
4: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.

0: हाँ जी मेरे भाइयों, आप जानते ही है लीजास कॉस्मेटिक्स वेयरहाउस सेल पर अमिताभ जी पहुंच चुके हैं, वहीं से दे रहे हमें अपडेट। आप भी पहुंचिए और मदर्स डे पर बेहतरीन गिफ्ट देने के लिए खरीदारी वहीं से करिए। आइए सीधे चलते हैं अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में, प्लीज हमारे श्रोताओं को अपडेट दीजिए। ओवर टू यू सर।
1: बहुत शुक्रिया जतिन जी। हेलो जीटीए, मैं हूं अमिताभ, लाइव फ्रॉम लीजास कॉस्मेटिक्स वेयरहाउस सेल। और यहाँ डील्स जो चल रही हैं ना, दे आर ट्रूली अनमिसेबल। बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं द हसल, द एक्साइटमेंट, लोग एक दूसरे को बुला रहे हैं, ये देख ये ले लो, इट्स दैट काइंड ऑफ अ वाइब ट्रूली। अब मैं सीधे बात करता हूँ डील्स की। अप टू 80% ऑफ ऑन कॉस्मेटिक्स, फ्रेग्रेंसेस, स्किन केयर एंड अदर प्रोडक्ट्स। और ये कोई रैंडम ब्रांड्स नहीं है जनाब, ये है लक्जरी लाइनअप ऑफ अरमानी, वर्साचे, गुची, बर्बरी, वेरोवैंग। मतलब नॉर्मली जो चीजें हम डिस्प्ले में देखकर अक्सर आगे ही निकल जाते हैं, आज वो हाथ में आए जा रही हैं, वो भी हमारे बजट के अंदर। मैं यहाँ एक शॉपर से बात कर रहा था और उन्होंने कहा इतना डिस्काउंट तो ड्यूटी फ्री पर भी नहीं मिलता गुरु। और मैं सच कहूँ, आई टोटली अग्री विद दैट जेंटलमैन। ध्यान रहे, ये वेयर हाउस सेल लिमिटेड टाइम के लिए ही है। अप्रैल 18 से शुरू हुई है और मई 10 तक चलेगी। और हर वीकेंड जहां नया स्टॉक आता है, लेकिन उतना ही तेजी से सेल आउट भी हो जाता है। शादी सीजन के लिए परफ्यूम्स, ईद के लिए गिफ्टिंग सेट्स, समर स्किन केयर, सब कुछ है एक ही जगह यहां पर, यानी कि लीजास कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल पर। और एक प्रो टिप, जल्दी से आ जाइए क्योंकि बेस्ट पिक्स गेट पिक्ड रियली फास्ट। और वैसे भी एक शायर ने खूब कहा है, डील तो है डील, डील का एतबार क्या कीजिए। देखा, अपनी गाने की स्किल्स भी मैंने बीच में घुसेड़ दी। तो आप अपनी गड्डी का जीपीएस सेट करिए टू लीजास कॉस्मेटिक्स एट 127 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, नेक्स्ट टू 404 एंड 407 एंड वेरी क्लोज टू 401। फॉर डिटेल्स विजिट leesascosmetics.com। जल्दी मिलते हैं एक बार फिर, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और चलते हैं इस खूबसूरत गाने की ओर।
0: अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों और भाइयों, जरूर पहुंचिएगा लीजास कॉस्मेटिक्स वेयरहाउस सेल, आपके लिए, सबके लिए, सब कुछ वहां पर।
2: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीजास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस, सिर्फ लीजास वेयरहाउस सेल पर। विजिट leesascosmetics.com।
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
4: घर कहीं भी लेना होई

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545.
4: आज मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जती।

हाँ जी मित्र भाइयों, करुणा बरसाने वाले हो भगवान बुद्ध। आज भगवान बुद्ध को हम दिल से याद करते हैं। भगवान बुद्ध का एक शाश्वत सत्य है, इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह अक्सर किस्मत को दोष देता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने ही कर्मों की विरासत ढो रहे हैं। हमारे कर्म ही हमारे जन्म का कारण है, वही हमारा बंधन है और वही हमारी एकमात्र शरण स्थली भी है। इससे भाग्य और दुर्भाग्य निर्मित होता है। सरल शब्दों में कहे तो जीवन एक इको है, गुंज की तरह है। आप जो ब्रह्मांड को देंगे वही तीन गुना होकर आपके पास वापस आएगा।

जी नव ज्योत जगाने वाले हो बहनर भाइयों, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है आज। उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही कि कर्म के तीन द्वार होते हैं, मन, वचन और शरीर। जो शरीर से किया जाए, जैसे किसी की मदद करना या किसी को चोट पहुंचाना, यह सब प्रत्यक्ष होता है। जो शब्दों के माध्यम से हो, किसी के बारे में अच्छा या बुरा कहना, समाज इसे भी गंभीरता से लेता है। और मेंटल यानी कि मानसिक, किसी के बारे में बुरा सोचना, अक्सर हम इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही से हम सबसे बड़ी चूक कर देते हैं। हाँ जी बिंदर भाइयों, बुद्ध पूर्णिमा आज मनाई जाती है। दिल से प्रणाम करते हैं भगवान बुद्ध को।

हाँ जी मित्र भाइयों, भगवान बुद्ध की करुणा हर किसी पर रहे, ऐसी हम दिल से दुआ करते हैं। मित्र भाइयों, उन्होंने जीवन जीने का बेहतरीन संदेश दिया, उन्होंने हमें जागरूक रहने की एडवाइस यानी कि प्रेरणा भी दी। सत्य यह है कि मन ही असली इंजन है, शरीर और शब्द तो बस उसके डिब्बे हैं। जो विचार मन में अंकुरित नहीं होता वह क्रिया का रूप ले ही नहीं सकता, इसलिए कर्म की शुद्धता का पैमाना नियत है, क्रिया नहीं। अगर नियत अच्छी रही तो जिंदगी में हमेशा मन को शांति प्राप्त होती है। हाँ जी मित्र भाइयों।

0: हाँ जी मित्र भाइयों जी, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आप जानते ही है आज है रेडियो वॉइस लाइव ऑन लोकेशन फ्रॉम लीजास कॉस्मेटिक सेल 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट इन मार्कम। आइए सीधे चलते हैं अमिताभ जी के पास और लेते हैं वहां की जानकारी। अमिताभ जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या हलचल मच रही है लीजास कॉस्मेटिक सेल पर, प्लीज हमारे श्रोताओं को अपडेट कीजिए।
1: धन्यवाद जतीन जी, आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस एफएम 101.3। मैं हूं अमिताभ एंड वी आर कमिंग टू यू लाइव फ्रॉम द मैसिव लीजास कॉस्मेटिक्स स्प्रिंग वेयरहाउस सेल। जैसा कि हम जानते हैं मदर्स डे इज ऑलमोस्ट हियर और हम सबको पता है कि मम्मी को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वो है टॉप टायर लग्जरी गिफ्ट सेट्स। यहाँ लीजास वेयरहाउस सेल पर एलिजाबेथ आर्डन और अरमानी के सेट्स पे ऐसी डील्स हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। शादी का सीजन इज ऑल्सो कमिंग अप, तो गिफ्ट स्टॉक अप करने का इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। आई एम सीइंग मिया वीवी विद ओवरफ्लोइंग शॉपिंग बैग्स, पीपल आर कमिंग फ्रॉम मिसिसागा, ब्रैम्पटन, मिल्टन, बेसिकली एवरीवेयर। द बेस्ट पार्ट, टेंशन फ्री एंट्री है क्योंकि पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ा है और स्टाफ ने लाइनअप को इजी नाइसली स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। शो योर मॉम सम लव विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। पहुंचिए फटाफट एट लीजास कॉस्मेटिक्स at 127 Commerce Valley Drive East Markham, next to 404 and 407 and very close to 401. For details visit lisascosmetics.com. Sale chal rahi hai April 18th se May 10 tak, so hurry, ye mauka chhoot na jaye. Chaliye ab chalte hain ek behtareen gaane ki aur. Take it away.
0: अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंद्र भाइयों 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट इन मार्कम जरूर पहुंचना क्योंकि वहां पर आपको मिलेगी बेस्ट प्राइजेस, बेस्ट क्वालिटी। लीजास कॉस्मेटिक्स सेल आपके लिए, ये हिडो वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
2: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
3: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
4: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना।

0: மீட் ரோஹித் த யெஸ் மேன் அட் ரிட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் பிளானட், 5200 டிக்சி ரோட், மிசிசாகா. டெலிபோன் 905-232 ரிட்ஸ், தட் இஸ் 232-7489. விசிட் ரிட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் பிளானட். சஸ்தா சமான் சஸ்தா நை, ஹை அண்ட் த சமான் மில சஸ்தா.
1: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
2: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है. समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है. और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए. ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009.
2: Dr. Neel Gajjar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देन के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी.
2: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545.
4: हाँ जी मित्र भाइयों, अजीब दास्ता है ये. हम हैं आपके दोस्त जतीन. बॉलीवुड की अजीब दास्तान में क्या आप जानते हैं कि बीबीसी के एक हिंदी के उद्घोषक के रूप में जिन्होंने काम किया वो बाद में बॉलीवुड के स्टार बने, बॉलीवुड के हीरो बने. कौन थे जो बीबीसी के हिंदी के उद्घोषक थे और फिर बन गए बॉलीवुड के स्टार? हाँ जी मित्र भाइयों, नाम उनका बलराज सहनी. हाँ जी बहनर भाइयों, बीबीसी के उद्घोषक के रूप में काम करने के बाद 1943 में भारत लौट आए. एक्टिंग करनी थी तो उन्होंने इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन इप्टा में शामिल होने का फैसला लिया. इप्टा की ही फिल्म धरती के लाल, इसमें बलराज सहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला और उन्होंने हलचल में भी काम किया. बेंद्र भाइयों, शूटिंग खत्म होने के बाद वो स्वतंत्र संग्राम से भी जुड़े और जेल में भी गए. 1951 में एक फिल्म आई हम लोग, उसके जरिए उन्हें अभिनेता की पहचान मिली और उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्में बलराज सहनी करते गए. 1961 में एक फिल्म आई, फिल्म का नाम काबुलीवाला. बलराज सहनी ने अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया. बेंद्र भाई, उसके बाद हकीकत, वक्त, दो रास्ते, एक फूल दो माली, मेरे हम सफर जैसी सुपरहिट फिल्में हैं जिसमें बलराज सहनी ने खूबसूरत काम किया. बेंद्र भाइयों, वक्त फिल्म में उन्होंने काम किया, जो रोल किया वो था लाला केदारनाथ का. क्या रोल निभाया बलराज सहनी ने. हाँ जी, ओ मेरी सोबरा जबी. बेंद्र भाइयों, ये नगमा उन्हीं पर फिल्माया गया था ना. 1973 में प्रदर्शित गर्म हवा बलराज सहनी की मौत से पहले उनकी महान फिल्मों में से सबसे अधिक फिल्म थी. बहुमुखी प्रतिभा के धनी बलराज सहनी लिखने में भी खासी रुचि रखते थे. उन्होंने कई किताबें भी लिखी और 13 अप्रैल को 1973 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. 1 मई, पहली मई के दिन उन्होंने इस दुनिया को हेलो कहा था. हाँ जी बिंद्र भाइयों, 1 मई 1913 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक मध्यम वर्गीय व्यवसायी परिवार में उनका जन्म हुआ था. बलराज सहनी की जिंदगी की अजीब दास्तान. बीबीसी उद्घोषक थे, बन गए बॉलीवुड के स्टार. ऐसी होती है तकदीर की बात. हम हैं आपके दोस्त जतीन.

0: हाँ जी मिंद्र भाइयों, ये डो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। मदर्स डे दस्तक दे रहा है और मदर्स डे के दिन क्या बेहतरीन गिफ्ट हम दे, अगर आप ये सोचते हैं तो आपके लिए सही जगह है लीजास कॉस्मेटिक्स वेयरहाउस सेल। मिंद्र भाइयों, प्रेस्टीज ब्रांड नेम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, बेहतरीन क्वालिटी किफायती दाम। अमिताभ जी पहुंच गए हैं लाइव ऑन लोकेशन पर, आइए हम भी चलते हैं 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट इन मार्कम और लेते हैं जानकारी अमिताभ जी से। अमित जी प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं क्या माहौल है और क्या मदर्स डे के लिए बच्चे बेहतरीन खरीदारी वहां से कर रहे हैं या नहीं, प्लीज हमारे श्रोताओं को अपडेट कीजिए।
1: थैंक यू जतिन जी, आपने सुना ये जो पीछे आवाजें आ रही है, ये शॉपिंग फ्रेंजी की हलचल है जतिन जी। लीसास कॉस्मेटिक स्प्रिंग वेयरहाउस सेल इज इन फुल स्विंग एंड द फोमो, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट फॉर दोज यू डोंट नो, इज हिटिंग एवरीबडी हार्ड। मैं इस वक्त चेकआउट काउंटर के पास हूँ और लोग भर भर के बैग्स उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अप टू 80% ऑफ डील्स आर नॉट अ जोक। अगर आप घर पे बैठे सोच रहे हैं कि कल चले जाएंगे तो भूल जाइए, प्रीमियम ब्रांड्स लाइक गुची एंड वर्साची आर मूविंग विद इन मिनट्स। It's a GTA का hot spot for a reason, दोस्तों। Look at the crowd. The vibe is 10 out of 10. And hey, I saw the parking lot coming in. It's huge and very well managed. So don't let the crowd scare you off. Grab your keys, hit the highways and get to Lisa's warehouse sale right now. ये deals miss मत करना, seriously. आपको आना है Lisa's Cosmetics at 127 Commerce Valley Drive East Markham, next to 404 and 407 and very close to 401. For details, visit lisascosmetics.com. और वापस चलते हैं जतिन जी और स्टूडियो के पास, जहां एक खूबसूरत सा गाना कर रहा है हमारा इंतजार। Take it away.
0: अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंदर भाइयों आप भी पहुंचिएगा फैमिली के साथ 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट इन मार्कम, लीजास कॉस्मेटिक्स वेयरहाउस सेल आपके लिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में पयास्विनी जी।

दुनिया जगर मगर है कि आज मजदूर दिवस है। चर्चा इधर उधर है कि आज मजदूर दिवस है। वो बात और है कि हमेशा की ही तरह कुछ लोग बस फायदे गिनने में ही लगे हैं। उन पर असर ही नहीं भाई कि आज मजदूर दिवस है। Well, May 1st is not just first day of the May. ये बहुत तरह से इंपॉर्टेंस रखता है, मैं शो में धीरे धीरे बताऊंगी। बट सबसे पहले ना, ये जो दिन है ये मेरा दिन है, ये आपका दिन है, ये हर उसका दिन है जो जिंदगी में ना कोलू के बैल की तरह जुता और मजदूरी की मजबूरी में जुटा रहता है। मेहनत कश लोग घूम फिर के मजदूरी तो बन जाते हैं, है ना? कभी सपनों के हाथों मजबूर, कभी अपनों की जरूरतों के लिए मजबूत, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल बिकम अपने आप में एक मजदूर। वैसे तो ये दिन ना सही मायनों में लेबर क्लास के राइट्स और उनके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट एक मुहिम के तहत डिसाइड हुआ था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 15-15 घंटे अनलिमिटेड आवर्स ऑफ वर्किंग फाइनली 8 घंटों में जाके सिमटे एंड जन्म हुआ आज के दिन का, इंटरनेशनल लेबर डे का। बट रिमेम्बर कि काम करेगी दुनिया तभी तो पैसा कमाएगी दुनिया, अमीर बनेगी दुनिया, और काम में बिजी रहकर कुछ अच्छा सा क्रिएट कर इनोवेटिव होकर झगड़ों बगड़ों से बची रहेगी दुनिया। वैसे भी रखे याद कि कहते हैं ना, खाली दिमाग होता है भाई शैतान का दिमाग। सो ऑन दिस रिमाइंडिंग नोट, दिस इज स्वाति एट होम एंड हैंसल एट स्टूडियोज ऑन फिल्मी नुक्कड़ CMR@5 सेइंग कि आजकल कुछ लोगों को हो सकता है उनके हाथों में बेशक थोड़ा समय आया हो निकलकर, बट रिमेम्बर टू यूटिलाइज इट फॉर बेस्ट, क्योंकि छू मंतर हो जाएगा ये भी जल्दी ही फुर्सत की छोटी सी झलक दिखलाकर और ढेर सारे पाठ पढ़ाकर।

0: टाउन वैली नॉर्थ हंडे आपको दे रहा है मौका फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Acha, agar aap bhi brand name cosmetics, hair care, health and beauty products, fine chocolates, designer sunglasses, fragrances khareedna chahte hain apne liye ya apno ke liye, par price tag dekhkar khud ko bas samjha lete hain, to bhai Liza's Cosmetics Warehouse Sale zarur jaye. Sabhi brands milengi and 80% tak ki savings bhi hogi. Yani bhari bachat aur brands dono baatein hamari pasand ki. Mothers Day ke liye to gifts ki perfect variety milegi. But yes, it's only on Fridays, Saturdays, Sundays and Mondays. Jai at 135 Commerce Valley Drive East, Markham, Highway 7 and 404 ka intersection aur visit lizascosmetics.com.
0: Time aa gaya jiska tha intezar. Sirf Don Valley North Lexus pe. Ab lease rates sirf 0.9% se. और साथ में डिलीवरी क्रेडिट्स अप टू $1,500. बेस्ट सिलेक्शन के लिए विजिट करें डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस टुडे. 10% रेट रिडक्शन ऑफर सिर्फ 30 अप्रैल तक वैलिड है. विजिट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस.com टुडे. अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: आपकी दुकान या बिजनेस का सही नाम और सही वास्तु ला सकता है सक्सेस, क्लैरिटी एंड ग्रोथ, क्योंकि सही नाम और सही दिशा बनाते हैं किसी भी बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। तो बिजनेस का नाम करेक्ट करना हो या शॉप ऑफिस का सही वास्तु या बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी का यूज, कॉल पन्ना शाह एट 4376733125। 10 मिनट्स की कंसल्टेशन एकदम फ्री है। कॉल टुडे एट 4376733125।
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
4: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

0: Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं. For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com.
1: Movies released, Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच. तो भाई इस वीकेंड पर आज 7 सेंट्स पड़े गैस के दाम और वेदर वो जो गीला गीला सा बताया जा रहा है विद फ्रॉस्ट एडवाइजरी ऑन सैटरडे, ज्यादा घूमने फिरने की इजाजत तो वो नहीं दे रहे. वो बात और है कि हम मत वाले घर पे ना टिकने वाले कैनेडियन स्पिरिट लिए लोग किसी की सुनते कहाँ है बोलो तो. तो भाई मैराथन और वंडरलैंड खुल रहा है, अगर आपका मन है तो आप वहां जा सकते हैं. एंड यस, चेरी ब्लॉसम्स ने तो भाई इतरा के बुलाना समझो शुरू सा कर ही दिया है कि आओ और मेरे साथ सेल्फी वेल्फी खींचो और उसका सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, फ्लॉन्ट करो. बाकी हिंदी फिल्मों में आमिर खान प्रोडक्शंस का रोमांटिक ड्रामा रिलीज हुआ है. टाइटल है एक दिन, विद स्टार्स हिज सन जुनैद एंड साउथ की पॉपुलर स्टार साई पल्लवी. इट्स एन ऑफिशियल रीमेक ऑफ 2016 की थाई फिल्म वन डे, जिसका टाइटल था, मतलब नाम भी ट्रांसलेट कर लिया है कि क्यों दिमाग लगाया किसी अलग से टाइटल के लिए. तो कहानी है एक क्वाइट से शाय से आईटी प्रोफेशनल लड़के की, जिसके ऑफिस में एक चार्मिंग सी कलीग है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, उस पर उसका क्रश है. अब वो दोनों एक साथ किसी काम के लिए जाते हैं, वहां पे एक विशिंग बेल होती है और वो लड़का उस विशिंग बेल पे एक विश मांगता है कि एक दिन के लिए बस वो उसकी हो जाए गर्लफ्रेंड. एंड गेस व्हाट, मांगा हुआ उसका पूरा भी हो जाता है बस एक दिन के लिए. टेम्परेरीली उस लड़की को मेमोरी लॉस हो जाता है, फिर आगे क्या होता है उसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी. रिव्यूज हालांकि बहुत एनकरेजिंग नहीं है कि इसको देखा जाए. कोई ऑकवर्ड लव स्टोरी बता रहा है तो कोई ट्रश. फॉरेस्ट ग्रम के वो जो रीमेक आया था ना लाल सिंह चड्ढा आमिर खान का, उसके फेलियर के बाद लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं आमिर खान को कि भाई रीमेक वगैरह बनाने से बचो, कुछ ओरिजिनल बनाओ. सॉन्ग्स भी

ओके ओके है, मतलब चल रहे होंगे तो आप बंद नहीं करोगे, पर ऐसा नहीं है कि आप उन्हें चलाओगे अपने आप, दिलो दिमाग में टिकने वाले नहीं है। और मैं सोच रही थी कि डेफिनेटली अरिजीत सिंह की आवाज है, बट जहां वो बॉलीवुड को बाय कह चुके हैं, ही डिजर्व अ बेटर फेयरवेल आई गेस। हालांकि साई पल्लवी की एक्टिंग की तारीफें हैं, पर जुनैद को तो लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है रिव्यूज में। वेल, एक दिन के लिए आई सी, एक दिन तो छोड़ो, शायद एक घंटा भी निकालना चाहेंगे क्या आप? I doubt. Reviews suggests छोड़ दिया जाए।

0: Genesis Markham, Yahamile Luxury Ka First Class Experience with a State of the Art Dealership. Aur aapki apni language mein expert service. Lease or finance beautifully designed 2026 G70 from only 2.9%. Or finance 2026 GV70 from only 3.9%. Aaj hi book karein test drive. Visit genesismarkham.ca located at Woodbine Avenue and John Street Markham. We speak your language. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्को के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी,
1: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूं संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्को। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600।
1: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.

बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट अ डिजायर्ड प्राइस, तो माय रियलको के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोजा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत। बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यू भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना, एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा। विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%, उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें। घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ हिज कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू thousands of dollars. Free consultation hai. Call karein 416-843-7600. Sanjeev Manocha from My Real Co. 416-843-7600 or visit myrealco.com.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस.
3: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए. परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ, विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ. धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401. सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग. तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर. विजिट lisascosmetics.com.
4: फरवरी का महीना होता है बहुत स्पेशल. फैमिली डे भी होता है, वैलेंटाइंस डे भी. तो मॉर्गेज रेट्स विद अमित खुराना इस महीने के लिए है बहुत स्पेशल. 3 इयर्स फिक्स 3.59%, 5 इयर्स फिक्स 3.74%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.44%. साथ में $4,100 तक का कैश बैक भी, प्लस $1,500 तक का ज्वेलरी गिफ्ट कार्ड भी. सो कॉल अमित खुराना फॉर फ्रेश एंड फेयर February month mortgage rates at 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkurana.ca.

Wow, what a percussion in the song. Did you notice? वैसे सही कहते हैं कि ग्रेट म्यूजिक इज ऑफन अकम्पनीड बाय सुपर परकशंस, और आज का दिन ना यही रिकॉग्नाइज कराने वाला है, टू अप्रिशिएट परकशंस एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द म्यूजिक विच कैन बी एक्चुअली वेरी हीलिंग, बजाना भी और सुनना भी. इट्स इंटरनेशनल ड्रम डे, या आप कह सकते हैं परकशन डे भी. वो कहते हैं ना कि लाइफ फॉलोज अ रिदम एंड वी होल्ड द ड्रम. जैसा बजाएंगे लाइव भी हमें वैसा ही बजाएगी. ऑन अ सीरियस नोट, बात जब ड्रम्स की होती है ना तो एक्चुअली परकशंस की हो रही होती है, फिर चाहे वो ताबड़तोड़ तबला हो या ऋषि कपूर की डफली हो उनकी सिग्नेचर, या फिर शम्मी कपूर जी का वो रॉकी ड्रमर वाला अवतार हो लाइक दिस वन.

0: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे
1: एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा
0: ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी
2: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस है ना। अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स तो कितना अच्छा हो है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।
3: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844. That's 6478648844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए. परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ, विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ. धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401. सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग. तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर. विजिट lisascosmetics.com.
4: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं, और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर. सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए आप वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन. गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज. मिशेलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये. एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं. इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं. विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर. For details, visit mymechanicauto.ca.
5: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती.
6: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
5: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो. ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो.
6: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
4: सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा. रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव.

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के।

0: क्वींस ऑटो ग्रुप, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। क्वींस ऑटो ग्रुप, हमेशा आपके साथ, ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट राइट टू लाइफ टाइम केयर। Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: Movies released, Broadway's on. Kaun si web series should be binge watched? Agar hai confusion, to tune in for Nukkad's Weekend Watch. एक दिन के अलावा ऑल्सो रिलीजिंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बजट है जिसका 100 crores। हिस्टोरिकल ड्रामा है बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ शिवाजी जो कि फाउंडर थे मराठा एम्पायर के, एज वी ऑल नो। नाम है फिल्म का राजा शिवाजी। ये रिटन एंड को डायरेक्टेड बाय रितेश देशमुख है और कास्ट एंसेंबल इसका काफी व्यापक है। रितेश के साथ साथ संजय दत्त हैं, अभिषेक बच्चन हैं, विद्या बालान हैं, परदीन खान हैं, महेश मांजरेकर, बोमिन रानी, भाग्यश्री, अमोल गुप्ते एंड जेनिलिया डिसूजा भी हैं। मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं इसको, इंक्लूडिंग यू नो वीएफएक्स इफेक्ट्स कैसे हैं इस पर भी मिक्स रिव्यूज हैं। कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी ऑन द टाइटल, पर हिस्टोरिकल ड्रामा मुझे लगता है जब भी बनती है तो विवादों के घेरे में तो आई जाती है, उनकी दोस्ती उनसे अच्छी होती है। ओवरऑल इस फिल्म के रिव्यूज मच बेटर हैं देन एक दिन, इसको 2.5 से 3 स्टार तो मिल ही सकते हैं। इफ यू लाइक हिस्ट्री एंड यू लव शिवाजी, यू माइट लाइक टू वॉच इट, यू नो, जस्ट एज अ ट्रिब्यूट। देन ऑन ओटीटी रिलीज हुई है केरला स्टोरी 2 Z5 पर। अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल रही है पर कहा जाता है कि इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स एज दे क्लेम। देन ग्लोरी नाम की एक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है फिल्म, दिव्येंदु शर्मा और पुलकित सम्राट हैं लीड रोल्स में। ये स्पोर्ट्स क्राइम एक्शन ड्रामा है, मर्डर मिस्ट्रीज भी हैं इसमें, यू नो वो सब कुछ है, इंटरेस्टिंग हो सकती है। एंड यस, आपने अब तक टोस्टर नहीं देखी जो लास्ट वीकेंड पर रिलीज हुई थी, वो भी इस वीकेंड पर आप देख सकते हैं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग वॉच।

0: Swan Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: FIFA के टिकट चाहिए घर तो जाए डॉन वैली नॉर्थ हंडई पर. अब पूछो वहां क्यों? उन्होंने खूब समझाया हम सबका मन. अब देखो ना, FIFA के टिकट लेना कोई छोटी बात थोड़ी है. मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना. ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग फॉर अ साधारण इंसान है ना. पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान. अब पूछे कैसे? एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन. और फिर ड्रॉ होगा जून में. जिनके नाम निकला है उनको मिल जाएंगे टिकट्स FIFA के. अगर आप मुझसे कोई भी हंडई कार लेते हैं ना तो दो टिकट जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में. अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे. या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे. देखिये ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको FIFA टिकट मिल पाते हैं? और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट मिल पाए. अब आपको करने अपने प्रयास. जल्दी जाए एट डॉन वैली नॉर्थ हंडई Woodbine Avenue Markham. फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम.

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: मई 1st जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, यहां कनाडा में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स फिजिशियंस के राइट्स की बात करता है। इंडिया में दो राज्यों का जन्मोत्सव मनाया जाता है विद स्लोगन्स लाइक जय महाराष्ट्र एंड जय जय गरवी गुजरात, एज दीज टू इम्पोर्टेंट स्टेट्स गॉट देयर स्टेटहुड ऑन 1st ऑफ मई। इन शॉर्ट यू कैन से गुजराती एंड मराठी आर दोनों जुड़वा भाई, है ना?
3: रेडी? रेडी?

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
2: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
1: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को।
3: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
4: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
5: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 & 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
6: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
7: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353, 647-453-5353।
8: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
9: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. Drive home the electrified 2026 BZ Series. Rates as low as 0.39% with up to $10,000 in rebates. Check out the 2026 Prius plug-in hybrid. Rates from 4.49% with up to $7,500 in incentives. Orapipay, $500 trade-in bonus. Sirf Markville Toyota par. Visit markville.com. Ya aaj hi aa jaye. Highway 7, Markham. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.
0: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

कल आवाज थी नीति मोहन की, फिल्म थी जब तक है जान, और नीति मोहन की आवाज किस पर थी? अनुष्का शर्मा पर. ये जो परी है उनका आज बर्थडे है, एंड विशेस आर पोरिंग इन फॉर हर फ्रॉम फैंस एंड फ्रेटर्निटी एंड फैमिली एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. तो भाई चलो हम भी बहती गंगा में अपने हाथ धो लिए लेते हैं और एक और गाना उनकी फिल्म से प्ले कर देते हैं. द फिल्म इज जब हैरी मेट सेजल. सेजल का रोल उन्होंने प्ले किया था, गुजराती बोली थी, कुछ लोगों ने पसंद की थी, कुछ लोगों ने नहीं पसंद की थी, पर ये गाना वो है जो सबने काफी पसंद किया. इट्स हवाई बाय अरिजीत सिंह.

0: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज और फाइनेंस ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 फ्रॉम ओनली 2.9% और फाइनेंस 2026 GV70 फ्रॉम ओनली 3.9%. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca लोकेटेड एट Woodbine Avenue एंड John Street Markham. We speak your language. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888. सर्विंग

0: टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
1: बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट प्राइस दोनों ही चीजों का मेल है यहाँ पर। एक्सप्रेस की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी दो लोकेशंस हैं। ब्रैम्पटन में आप रेजोल्यूशन ड्राइव, जो वॉलमार्ट पल्लव प्लाजा है, वहां जा सकते हैं। और नंबर नोट कर लें ताकि बाद में कॉल करें तो आप पता कर सकते हैं डील्स के बारे में। 9054608888, वेरी सिंपल टू रिमेंबर, 9054608888। वहां पे क्या डील्स हैं इस वक्त हमारे लिसनर्स के लिए, वो बात हम करवा देते हैं आपकी राजन जी से। राजन जी, वेलकम।
2: थैंक यू सो मच स्वाति जी, और फिल्मी नुक्कड़ के सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। स्वाति जी, आज एक बहुत ही स्पेशल डील लेकर आया हूँ मैं अपने लिसनर्स के लिए। सो मैं लिसनर्स को कहूंगा कि एंड तक जुड़े रहें, बढ़िया डील आपको मिलेगी जी। सबसे पहले बताते चलूं कि जिन्होंने भी प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस लेने हैं दोस्तों, आपको ब्रांडेड फ्रेम्स यानी कि गुची के, वर्साची के, डॉल्ची गबाना के, प्राडा के, या फिर टॉम फोर्ड के, टिफनी के, ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स दोस्तों आपको आज फ्लैट 30% डिस्काउंट के ऊपर दिए जा रहे हैं जी। ऐसे ही स्वाति जी, रेबन के फ्रेम, अरमानी के फ्रेम, माइकल कोर्स के फ्रेम, केज स्पेड के, मार्क जेकब के, ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स आपको दोस्तों आज फ्लैट 50% ऑफ दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी डील आपको आज दोस्तों टॉमी हिलफिगर के फ्रेम, कैल्विन क्लाइन के फ्रेम, फैंडी के फ्रेम, या फिर आप वैलेंटिनो के फ्रेम लें, आपको मिलेंगे आज फ्लैट 75% ऑफ।
1: तो
2: ये बिगेस्ट डिस्काउंट है जी। मैं एग्जांपल दे दूं, ये भी नहीं कि आपको लगे कि बहुत महंगा है, टॉमी हिलफिगर का फ्रेम अगर आपको 469 का है जी, तो 75% ऑफ करके आपको सिर्फ $110-$115 का मिल रहा है जी। तो दिस इज द बेस्ट प्राइस यू कैन एवर गेट। साथ के साथ हमारा वैल्यू पैकेज, इतनी सेविंग होती है स्वाति जी, यू कैनॉट बिलीव कि लोग आकर इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले बताऊं, तकरीबन 700 से 800 फ्रेम हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है। ये सभी के सभी सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम है। इसमें लंडन फॉग, जिसकी जैकेट्स आती हैं, ये बड़ा अच्छा ब्रांड है जी, लिवाइस, रैंगलर, वैन ह्यूसन, एडी बावर, ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम जिसमें शामिल है जी, लेडीज के, जेंट्स के, बच्चों के, आप कोई भी फ्रेम चूज कर लें। $300 की कीमत का ये जी फ्रेम है। एक तो ये फ्रेम आपको दिए जा रहा है वैल्यू पैकेज में, दूसरा $100 की प्राइस के आपको लेंसेज दिए जा रहे हैं। सो कुल मिलाकर ये 400 का पैकेज है, जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $129 में दे रहे हैं, सिर्फ 129। और ऐसे ही स्वाति जी, जिनको प्रोग्रेसिव ग्लासेस चाहिए, एसिलोर कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं, $300 की कीमत के लेंसेज और $300 की कीमत का फ्रेम, 600 का पैकेज है, जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $258 में दे रहे हैं स्वाति जी। और इतना ही नहीं, आप अपने ग्लासेस के ऊपर जितनी मर्जी कोटिंग ऐड करवाएं, सभी की सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ। सो ये अमेजिंग डील है जी। और एक स्पेशल डील फिल्मी नुक्कड़ के लिसनर्स के लिए हो जाए स्वाति जी, स्पेशल डील
1: जी, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक थी।
2: Okay, जितने भी लिसनर्स आज आ रहे हैं दोस्तों, आप चाहे 129 का पैकेज लें, चाहे 258 का, चाहे आप 50% ऑफ ब्रांडेड फ्रेम ले रहे हैं, या फिर 75% ऑफ ब्रांडेड फ्रेम कोई भी परचेज कर रहे हैं दोस्तों, तो साथ में आपको स्केचेस के पोलराइज्ड सनग्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे सिर्फ उनको जो कॉल कर अपना नाम लिखवाएंगे आज। सो कॉल करने के लिए नंबर 905-460-8888, 905-460-8888। मैं रिपीट कर दूं जी, जितने भी कॉलर्स आज कॉल करेंगे, आप दोस्तों कोई भी परचेज कर रहे हैं, और जरूरी नहीं परचेज आपने आज करनी है, आपने सिर्फ आज नाम लिखवाना है, परचेज आप आज, कल या नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नाम लिखवाया है उनको साथ में स्केचेस के पोलराइज सनग्लासेस बिल्कुल फ्री। कॉल करने के लिए नंबर 905-460-8888, 905 4608888 और हमारा एड्रेस बड़ा सिंपल सा जी, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड स्टील्स कह लें या कैनेडियन स्टील्स की इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट है बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बुक करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस या फिर प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस। सो एक ही नंबर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए या ये फ्री सनग्लासेस लेने के लिए अपनी परचेज के साथ, 905-460-8888, 905-460-8888। थैंक यू सो मच स्वाति जी।
1: मैं एक बार बिफोर यू गो मैं एक बार समराइज जरूर करना चाहूंगी राजन जी आपके सामने, सो दैट कोई चीज किसी से मिस हो गई है या मैं गलत बोल रही हूँ तो आप करेक्ट कर दें। तो आज जो हमने बात करी है यहाँ पे स्पेक्स एक्सप्रेस पे ब्रांडेड सनग्लासेस फ्लैट 30% वाले भी हैं, 50% वाले भी हैं, 75% वाले भी हैं। वैल्यू पैकेज की हमने बात करी है, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता खासकर वो लोग वो फायदा उठा सकते हैं, जहाँ पे $300 के जो सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम्स हैं वो आपको सिर्फ $100 में मिल सकते हैं, और साथ में $129 में $400 वाला पैकेज आप ले सकते हैं। अगर प्रोग्रेसिव लेंसेज लेने हैं तो आप $600 वाला पैकेज सिर्फ $258 में ले सकते हैं। एंड यस, कोटिंग जो है सबको चाहिए होती है, वो फ्लैट 50% ऑफ हाफ रेट में है बिल्कुल कोटिंग। एंड फिल्मी नुक्कड़ के आप लिसनर्स हैं अगर, तो भाई अभी फोन करके आप बाय करना भी जरूरी नहीं है, बस अपना नाम लिखवा दें। अगर सिर्फ नाम भी लिखवाते हैं तो जब जाके खरीदेंगे उस वक्त आपको, क्योंकि आपने नाम लिखवा दिया है, आज स्पेशल स्केचेस के पोलराइज्ड सनग्लासेस बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है, आपको कॉल करके नाम लिखवाना है, और जब भी आप खरीदने जाएंगे आपका, क्योंकि नाम लिखा हुआ होगा, आपको स्केचेस के पोलराइज्ड सनग्लासेस बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। नंबर टू कॉल एंड गेट इट रजिस्टर्ड विद योर नेम, 905-460-8888।
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। अभी कॉल करके लिसनर्स अपना नाम लिखवा लें और ये फ्री गिफ्ट जरूर ग्रैब करें किसी भी परचेज के साथ, 905-460-8888, 905-460-8888। और स्वाति जी ये भी बताता चलूं कि हमारा स्टोर कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला जी। आप वॉक इन करके कभी भी इन डील्स का फायदा ले सकते हो, लेकिन अपना नाम जरूर लिखवा दें ताकि ये डील आप मिस मत करें।
1: परफेक्ट, नाम आज ही लिखवाएं जहां आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राजन जी, एंड गुड लक फॉर टुमारो एज वेल।
2: थैंक यू सो मच सतीश, थैंक यू जी,
1: गुड लक।

0: और आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर, विजिट lisascosmetics.com।
1: टाइम आ गया जिसका था इंतजार, सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पे अब लीज रेट्स सिर्फ 0.9% से, और साथ में डिलीवरी क्रेडिट्स अप टू $1500। बेस्ट सिलेक्शन के लिए विजिट करें डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस टुडे। 10% रेट रिडक्शन ऑफर सिर्फ 30 अप्रैल तक वैलिड है। विजिट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस .com टुडे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: फॉलो अस ऑन फेसबुक, फिल्मी नुक्कड़ इट्स द फ्री टाइम।

கல்கி 1999 की सुपर हिट पेट्रियोटिक थ्रिलर वो आमिर खान वाली सरफरोश इट कंप्लीटेड इयर्स ऑफ रिलीज. ये फिल्म बेशक 1999 में रिलीज हुई थी पर इसकी कहानी पर काम रिसर्च पोस्ट प्रोडक्शन वर्क सब कुछ 1992 में ही स्टार्ट हो गया था. कहते हैं इससे पहले सरफरोश नाम से मनमोहन देसाई की एक फिल्म आनी थी 1979 में जिसमें बिग बी आने वाले थे पर वो फिल्म शेल्फ हो गई. उसके बाद 1994 में राजकुमार संतोषी ने भी इसी नाम से फिल्म अनाउंस की अलोंग विद बॉबी देओल एंड पूजा भट्ट पर वो भी शेल्फ हो गई. हालांकि वो फिल्म दोबारा बनी विनाशक नाम से बनी और उसमें सुनील शेट्टी थे बट ये वाली जब अनाउंस हुई ये बनी भी रिलीज भी हुई और सुपरहिट भी हुई. हर बार की तरह आई एम नॉट गोइंग टू से कि मालूम है इस फिल्म के लिए लीड रोल के लिए कौन फर्स्ट चॉइस थे क्योंकि इट वॉज आमिर खान ओनली. उन्हें ही ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखी गई थी. वो बात और है कि डायरेक्टर जॉन मैथ्यू जिनकी डेब्यू फिल्म भी थी एंड आमिर खान ने उसके बाद साथ काम फिर नहीं किया. क्यों नहीं किया? वेल लेट इट बी इन रैप्स. यू एंजॉय दिस ट्रैक.

0: दुकान या बिजनेस का सही नाम और सही वास्तु ला सकता है सक्सेस, क्लैरिटी एंड ग्रोथ, क्योंकि सही नाम और सही दिशा बनाते हैं किसी भी बिजनेस को स्ट्रांग। तो बिजनेस का नाम करेक्ट करना हो या शॉप ऑफिस का सही वास्तु या बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी का यूज, कॉल पन्ना शाह 8437673-3125। 10 मिनट्स की कंसल्टेशन एकदम फ्री है। कॉल टुडे 8437673-3125।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
0: Brand name cosmetics, hair care, health and beauty products, fine chocolates, designer sunglasses, fragrances खरीदना चाहते हैं अपने लिए या अपनों के लिए, पर price tag देखकर खुद को बस समझा लेते हैं, तो भाई Liza's Cosmetics Warehouse Sale जरूर जाएं। सभी brands मिलेंगी and 80% तक की savings भी होगी, यानी भारी बचत और ब्रांड्स दोनों बातें हमारी पसंद की। मदर्स डे के लिए तो गिफ्ट्स की परफेक्ट वैरायटी मिलेगी, बट यस इट्स ओनली ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडेज एंड मंडेज। जाइन एट 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट, मार्कम, हाईवे 7 एंड 404 का इंटरसेक्शन, और विजिट lizascosmetics.com।

0: टाइम आ गया जिसका था इंतजार, सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पे। अब लीज रेट्स सिर्फ 0.9% से, और साथ में डिलीवरी क्रेडिट्स अप टू $1,500। बेस्ट सिलेक्शन के लिए विजिट करें डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस टुडे। 10% रेट रिडक्शन ऑफर सिर्फ 30 अप्रैल तक वैलिड है। विजिट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस .com टुडे। A proud member of Vane's Auto Group.
1: And also today is the birthday of a very versatile classical mein to aap keh sakte hain mahir singer and composer of yesteryears. Matlab yesteryears kehna actually galat hoga kyunki unke gaane hum ab bhi utne hi shauk se sunte hain jitne tab log sunte the jab wo release hue the. Aur main baat kar rahi hu Manna Day sahab ki, jo khud composer bhi the par fan the S.G. Barman sahab ke, khud gayak the umda par fan the Mohammad Rafi sahab ke. Aur unka passion sirf singing and composing tak seemit nahi tha. He was a national level ka रेसलर एज वेल एज कुकिंग में गजब इंटरेस्ट रखते थे. सुनते हैं कि आधे टाइम तो मदन मोहन साहब से उनके जो वार्तालाप एक्सचेंज होते थे वो रेसिपीज से रिलेटेड होते थे. और फिर आया थिएटर. यस, वो तो खैर उनके वो यू नो फनी ड्रामा टाइप सॉन्ग सुनकर ही पता चलता है कि कितना अच्छे रहे होंगे उसमें. राज कपूर की नकल उतारनी हो या टुनटुन की आवाज निकालनी हो, कहते हैं कि ही कुड डू ऑल बड़े मजे के साथ एंड एफर्टलेसली. साथ ही कहते हैं वो जो पड़ोसन का गाना है ना, वो चतुर नार, वो जब उनसे गाने के लिए कहा गया था तो ही क्वेश्चन्ड महमूद के भाई तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं गाने में किशोर से हार जाऊंगा, वो भी जब बात क्लासिकल की हो या सरगम की हो. तो उन्हें खैर समझाया गया कि भाई महमूद को गाने में हराना है और महमूद की आवाज गाने में आप हो, प्लस ये जो ऊट पटांग टाइप की सरगम है, धूमधाम टाइप उसमें जो बोल रहे हैं किशोर दा, तो वो सरगम किशोर दा की लिखी हुई है, तो वो उन्हें ही गाने दो और उन्हें ही जीतने दो. एंड देन दैट सॉन्ग केम इनटू बीइंग.
2: सो वेल, ऑन दिस किसफुल नोट, this is Swati signing off for now, leaving you with this gana, which is favorite of many.

0: घर खरीदने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से रابطہ कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Avais Chaudhary or Munir Hussain, 647-321-7444. It's 647-321-7444.
4: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, इट्स 9058280009। यो लॉगिन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अपने

0: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्टगेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्टगेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
4: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैश साहब के रबते का नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा के हिसाब से होता है, उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कुरैश साहब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में हैं फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 416-570-0157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैश साहब, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है, तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहां पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है, तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पर एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले अपने लॉयर के साथ। आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। ये आज बात मैंने इसलिए निकाली अरशद कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ औक़ात पता चल जाता है, बाज़ औक़ात नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात जैसे मिसाल के तौर पर अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी, या मेरी बेटी बैठी हुई थी, या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, कि कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं, और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है, बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को, लालच हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदारा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहां पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था, उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें, ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद है जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। ہیں, کوئی بھی آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہے, ایٹ فالٹ ناٹ ایٹ فالٹ, پلیز مجھے کال کریں. میں آپ کی اپنی انجم قریشی 416-570-0157 میرا نمبر ہے. بہت بہت شکریہ.
4: بہت شکریہ انجم قریشی صاحبہ, اور منڈے انشاءاللہ آپ سے پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو. نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157 416-570-0157 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں ہی فیصلے کرتا ہوں, میں ہی کروں گا, کانگریس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے. بعض یہ خبریں تھیں کہ ان سے جو ہے اب وہ کیا فیصلہ نہیں کر سکیں گے, ان کی ختم ہو گئی ہے جو کہہ لیجیے اتھارٹی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میری ہی اتھارٹی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران سے بات چیت ہو رہی مگر آگے نہیں بڑھ رہی, اور اس کے ساتھ ایران کا 90% ان کی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہوگی. بہت سی باتیں اس حوالے سے کی ہیں, تھوڑی دیر میں سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی اشاری.

अब भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते। वो मुसाफिर खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। खाक ही अव्वल व आखिर ठहरी, करके जर्रे को गौहर क्या करते। राय पहले से बना ली तूने, दिल में अब तेरे घर क्या करते। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते।

0: तालाब अट्टी को कॉल मिला।
1: तालाब 6472957861 Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. तालाब 6472957861 तलावट 6472957861
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
3: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
4: हांडी मसाले बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 4167465550 7465550।
6: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रابطہ कीजिए 4168559464। शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 4168559464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम